0: इंश्योरेंस।
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
2: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 403-903-6757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
3: की तुहाडे परिवार विच किसे नू होम केयर दी जरूरत है? अपने ही घर अंदर अपनी बोली विच होम केयर प्राप्त करन लई YYC होम केयर वालियां दा अगला संदेश सुनो।
4: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वीरपाल कौर टाटा, मैं फाउंडर हां YYC होम केयर सर्विसेज दी एंड मैं पैरामेडिका बाय प्रोफेशन। एट YYC होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे आं जिदे विच असी सरकार नू सिद्धा बिल करदे आं अंडर क्लाइंट डायरेक्टेड होम केयर इनवाइसी प्रोग्राम। इहदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ। उहदे लई तुहानूं कोई भी क्वेश्चन होण तुसीं सानूं फोन कर सकदे आं 8257600983 ते। थैंक यू।
5: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस

0: एपिसोड करे हैं हमने, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप हमें अपना फीडबैक देते रहिए कि हम जो कर रहे हैं ये ड्रामा डेस्क और इसके रिव्यूज कर रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कोई नए नए गेस्ट लाते रहें ताकि उनके भी हम रिव्यूज सुने, उनसे भी समझे। तो सबसे पहले जलाल मैं ये पूछना चाहूंगी, yes. आप देखते हो ड्रामे?
1: सम ऑफ देम, यस, जस्ट ऑन फेसबुक की जाता ना रील्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह, यस,
0: थोड़ी बहुत आइडिया तो होगी।
1: या या या, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, या या या,
0: ठीक है। तो हम मेरे साथ हैं, ये हमारी बहुत अच्छी सी दोस्त भी हैं और काफी आप लोग इनको अच्छी तरह से जानते भी होंगे। आज आई हैं हुमैरा फलक हमारे साथ रिव्यू करने के लिए, और कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो ये भी देख रही हैं और मैं भी देख रही हूँ, एक दो ऐसे हैं जो ये नहीं देख रही मैं देख रही हूँ, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो हम दोनों देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो रिव्यूज हैं हम दोनों के कितने मैच होते हैं और कितनी हम लोग की मुखाफिलत होती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो कोशिश कर रही हूँ थोड़ी हार्ड उर्दू बोलने की, जबान जो है ना अब यहाँ रहकर थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा हार्ड सवाल करते हैं। तो लेकिन ड्रामों से बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो ये समझती हूँ कि आजकल के बच्चियों को भी देखने चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारी अच्छी चीजें भी सिखा रहे हैं आजकल।
1: तो यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट वी स्टार्ट ऑन जो है दिस नोट, ऑफ कोर्स वी लिव इन दिस ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ कनाडा, लेट्स हैव अ कपल ऑफ वर्ड्स फ्रॉम यू गाइस अबाउट लाइक अबाउट कनाडा।
2: श्योर, हां जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच जलाल भाई एंड सलमापा फॉर हैविंग मी अगेन,
1: यू वेलकम
2: ओवर फॉर दिस शो। आई हमेशा अच्छा लगता है यहां पे आके, और हैप्पी कनाडा डे टू एवरीवन जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं।
0: आई थिंक
2: So I think so grateful to be in this country, to be able to call this country our home. 13 साल पहले मैं कनाडा आई अपने बच्चों के साथ, और मतलब I'm just so grateful that this place allowed us to grow as a family,
1: exactly,
2: and you know, and build a family also. Scratch up just a log, my friends. And you know, just sense of belonging Canada ne hame diya, like I think we'll always be internally grateful for that.
1: True, absolutely.
2: So it's a beautiful country. Jaise hum hamesha kehte hain, diversity is our strength. We need to cherish it. We need to respect other people's perspective, their point of view. And there is always more than one way to live your life. So now your way is not the only way. So isko leke agar hum sabko embrace karke saath mein chale, to I think we can build a really we can build home anywhere in the world, actually.
1: True, absolutely.
2: So just love being in this country and
0: थैंक यू। सो मैं भी सबसे पहले सारे अपने हम वतनों को, अब तो हमारा यही वतन है, सालगिरह, कनाडा की सालगिरह की मुबारक देना चाहूंगी। और ये इनको तो आए हुए सिर्फ 13 साल हुए, मेरी तो पूरी जिंदगी यहाँ गुजर गई। मैं शादी करके यहाँ पर आई थी और मुझे यहाँ की हर चीज पसंद है, लेकिन मुझे सिर्फ एक सर्दी नहीं अच्छी लगती, और स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग ओल्डर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जैसे कि हम सब हैं, कि ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री, और स्पेशली जो हम यहाँ कैलगरी में रहते हैं रॉकीज के बिल्कुल करीब, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरे तीनों बच्चे कनाडा में पैदा हुए और बहुत अच्छे, हमारा बहुत अच्छा, बहुत सिक्योर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी, वो बहुत अच्छा गुजरा, और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और दिस इज सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ इज सच अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, और इतनी डाइवर्सिटी है, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, और बहुत सुकून है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इस कंट्री में हमें रहने को मिला, और अल्लाह करके हमारे बाकी वक्त भी अच्छा गुजरे। और आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि आपकी बच्चियां हैं यहाँ पे, उनका भी बहुत अच्छा वक्त गुजरे। तो या दिस इज बीन अ रियली गुड कंट्री फॉर अस,
1: आई थिंक दिस इज ऑल ब्लेसिंग्स फॉर अस, जो भी टू बी इन कनाडा। लेकिन आप पता किसकी बात करें थे, लेकिन मैं और अभी हूं, मेरे तो बच्चे हैं, अभी तक हम तो मेरे यंगस्टर्स हैं, अर्ली 20-30s में है। आप पता नहीं किसकी बात कर रही थी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, बट नो। तो लेट्स स्टार्ट विद जो है पाकिस्तानी ड्रामा, ऑफ कोर्स दिस इज द स्पेशल फॉर द रिव्यूज एंड कमेंट्री ऑन द पाकिस्तान ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामास। तो विल स्टार्ट विद वन ऑफ आवर फर्स्ट ड्रामा।

0: You know, aajkal jo ja raha hai super duper shada hai. Lot of people are watching these days.
1: Yeah, main bilkul main zara zara isko share kar do.
0: Yes, yes,
1: and
0: yes.
1: And then I'm all ready for you. Yeah, kar diya.
2: Main bole. Haan ji, main ye baat kar rahi thi ki jab Salma aap ne kaha ki dramas bachon ko dekhne chahiye aur yahan pe main zarur kahungi ki bilkul I second that ki zarur dekhne chahiye. Uska reason ye hai ki हमारे बच्चे हमारी जुबान फिर बोल नहीं पाते यहां पे और उनको उस तरह की समझ भी नहीं आती क्योंकि हम घर पे जितना भी बोल रहे हैं because they catch you know English from here anyway so they learn English everywhere they go to school and so उर्दू या जो हम अब जो है ये वैसे भी उर्दू जो है मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारा उधर लिटरेचर जो है इट्स डाइंग राइट सो वी नीड टू मेक श्योर दैट यू नो इट कीप्स लिविंग एंड Our generation knows how to, you know, communicate in a language. So, it's very important for children to watch dramas. It's also important to see our language. Because if you have dramas in your house, then, you know, they get to know about your culture as well. Our dressing back home. You know, all of that.
1: Yeah, yeah.
2: And obviously, certain issues bhi hai jo ab highlight in our dramas, which are very important. So, yes. मैं भी इस बात में बहुत आपको सपोर्ट करती हूँ कि
1: बिल्कुल सही है तो बताओ तुमको शदाई कैसा लगा
2: नहीं मैंने एक्चुअली नहीं देखा
1: नहीं देखा शदाई अच्छा कौन सा देख रही हो
2: मैं एक्चुअली जंजीरें देख रही हूँ एक मोहब्बत और अभी आदरा जमीर का आया है माया खान के साथ वो स्टार्ट किया है डॉक्टर बहू देख रही हूँ और बस तेरा साथ हो इस वक्त मैं बहुत
1: चले लेट्स
0: स्टार्ट विद बस तेरा साथ बस तेरा साथ है या इज इट्स डूइंग गुड रियली
1: इट्स गुड डूइंग रियली
2: बिल्कुल हां जी
1: बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्या उसकी स्टोरी लाइन उसकी एक्टिंग के हमें इससे क्या लाइक मुझे ये ड्रामा मैं अपना बताती चलूं कि मुझे इस ड्रामे में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो देखें इसको और सीखें इससे तो व्हाट डू यू थिंक
2: नहीं बस तेरा साथों का जो एक प्लॉट है वो मैं पहले मैं एक और भी जगह रिव्यू करती हूँ हमेशा बात करती हूँ कि ये स्टोरी अगर आप उस तरह से देखें तो इस तरह की नहीं है कि हमने पहले नहीं देखी
1: नहीं देखी ये तो मैंने
2: एक भतीजा एक ऑर्फन भतीजा या भांजा है वो घर पे रह रहा है उसके घर वाले उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं उसके ताया वीव सीन दैट सो मेनी टाइम्स एंड वीव आल्सो सीन कि जहाँ पे लड़की और उसका भाई बहन के साथ बुरा सलूक कर रहा है आफ्टर यू नो द फादर पास्ड अवे वो मेन तो हमने देखा हमने लेकिन देखा जो इसके अंदर जो नुएंसेस है या जो सब प्लॉट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें जो अंडरलाइंग मैसेजेस दिए गए हैं कुछ चीजों को जो चैलेंज किया गया है जिनका हमें पता नहीं था जैसे इनहेरिटेंस लॉ जिसमें आप उसने अपनी बेटी को आधा हिस्सा दे दिया अपनी जायदाद से जो कि पाकिस्तान में नहीं होता पाकिस्तान में एक्चुअली जो शरिया लॉ है हम वो भी नहीं प्रैक्टिस करते अ लॉट ऑफ टाइम्स हम वो हिस्सा भी नहीं अपनी बेटियों को देते तो लेट अलोन कि आपने उसको आधा दे दिया राइट तो किस तरह उसको वो मुश्किलें आई उसका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो उन्होंने एटलीस्ट दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि गर्ल्स शुड हैव इक्वल और दे शुड हैव शेयर इन इनहेरिटेंस जैसा हमारे इस्लाम में है दूसरा जो हक मेहर का था मुझे वो बहुत अच्छा सीन तो द सीन वॉज ब्यूटिफुली शॉट इन द मॉस्क बहुत अच्छा था और जिस तरह उसको उन्होंने कहा कि यू नो हक मेहर देना है
1: आपको
2: और जिस तरह उस लड़के ने एकदम से स्पॉन्टेनियसली बोल दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं और उसको याद आया अच्छा सिर्फ घर है तो मैं घर ही दे देता हूँ यू नो सो जस्ट दैट ऑल्सो एम्फेसाइजिंग ऑन दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि उन्होंने वो दिखाया तो जो इसकी जो अंडरलाइन कुछ मैसेजेस हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे पर उसके अलावा मैं आपसे पूछती हूँ मुझे एक्टिंग बहुत पसंद आ रही है फरहान से कि आप उससे पहले बात करें फिर मैं करती
1: नहीं तो सबसे मैंने हाँ जो एक्टिंग है फरहान की बहुत ज्यादा जो उसको रोल दिया गया है जो उसको कैरेक्टर दिया गया है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज तरीके से बहुत अच्छे से उसको लेकर वो उसको पोर्ट्रे कर रहा है बहुत ज्यादा और इवन दो कि वो अंसा जो लड़की है द वे शी इज के देखो वो है तो दिखाया कि बड़ी तेज लड़की है किसी से डरती नहीं है लेकिन वो इधर आकर भी शी इज बींग सो रिस्पेक्टफुल
2: तो हाँ ये है
1: ये बहुत अच्छा दिखा रहे हैं इसमें कि लड़की चाहे कैसी है लेकिन अपने ससुराल में है चाहे कुछ भी है वो उसका ससुराल है लेकिन वहां पर भी वो अपनी एक तरीके से वो उसकी सास होती है अनस की जो चची ताई है लेकिन वो उससे बदतमीजी नहीं करती जब उसको मना इसी जब ये वाला जो एपिसोड था कि वो तो वो दिखा रहे हैं कि देखें आप रिस्पेक्ट बहुत जरूरी चीज है चाहे आप उसको दूसरी तरीके से भी संभाल सकते हैं आप एकदम बदतमीजी से जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे तुमने कहा कि वो हक में तो उसकी दोस्त भी जब

0: भाग के उसको बोलती है कि ऐसा बंदा है कि जो और लोग भी होते हैं जो अपने गिफ्ट में अपनी बीवियों को पैसे देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, कहते हैं ये, लेकिन जिस तरीके से उसने अपना आधा घर और हक मेहर में दिया, ऐसा कौन करता है?
1: And that's the only thing that he has, right?
0: और फिर जिस तरह से वो इतने प्यारे तरीके से बोलती है हाथ उठाओ और दुआ मांगते हैं, तो
1: उससे उसके अलावा आप अब एक तो जस्ट कमिंग बैक टू दी एक्टिंग, यू नो कि फरहान का मुझे थोड़ा सा शुरू में कास्टिंग प्रॉब्लमैटिक लग रही थी कि वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं लगता, यूनिवर्सिटी का नहीं लगता, विच इज फेयर, लेकिन जो उसकी एक्टिंग है, जो उसके कैरेक्टर की एक्टिंग है अनस की, उसका बॉडी लैंग्वेज, द वे ही मूव्स, द वे ही टॉक्स, तो थोड़ा डरा रहता है, दो ही नोज व्हाट्स हैपनिंग इज रॉन्ग, लेकिन उसका कैरेक्टर इज लाइक सो सबमिसिव, यू नो, वो बहुत अच्छा कर रहा है, लाइक उसकी हर चीज, लाइक आई थिंक दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज, एंड सो इज सना जावेद, उसका कैरेक्टर इज वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, लेकिन आप देख लेंगे बदतमीजी उसने ना सिर्फ इधर, उसने अपने घर में भी कभी अपनी भाभी या भाई के साथ, यू नो, बिकॉज देर आर वेज दैट यू कैन disagree, there are ways you can stand up for yourself, you don't have to go low to put your case forward or to win the argument. तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है. और जो एक बात है कि हमारे यूजली हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज्यादा हमेशा रोता धोता और बहुत ज्यादा यू नो मिन्नत करें या देर ऑब्सेसिंग ओवर अ गाय, जैसे कि आपके बाकी ड्रामास में होगा, लेकिन इसमें मुझे कि उस लड़की का स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इतना अच्छा है और उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, यू नो, और उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, बट शी इज नॉट रेडी टू गिव अप ऑन दैट. तो ये मुझे उसकी, यू नो, इस कैरेक्टर की, और यही आई थिंक यूनिकनेस है इस ड्रामे की, उसमें ये डिफरेंट, कि हम यूजली प्लेज में लड़कियां वेट कर रही हैं कि लड़कियां उनको बचाएंगे, बट इधर ऑपोजिट है, लड़की इज एक्चुअली स्टैंडिंग अप फॉर द गाय, व्हिच आई एम टोटली लविंग. इट कैन हैपन, यू नो, लड़कियां स्ट्रांग हो सकती हैं और लड़का भी हो सकता है.
2: तो यू नो, इज इट राइट टू से, यू नो, जैसे आजकल जो हानिया का ड्रामा नहीं आ रहा, या तो फिर जो सभा का ड्रामा नहीं आ रहा, लेकिन सना जावेद इज कैरिंग द स्क्रीन राइट नाउ.
1: There are other dramas too, like Maya Khan का भी चल रहा है, and then you know जो हम
2: लेकिन सना की बहुत तारीफ,
1: लेकिन सना की one of the strongest acting है, but we will talk about Sajjal's acting too in Zanjeere, but
2: yes, Sajjal is amazing.
1: सना is definitely, उसका comeback हुआ है बहुत अरसे के बाद,
2: बहुत
1: अच्छा कर रही है,
2: और जितना वो negative में थी पिछले 2-3 साल से, now she's coming, now she's coming very strongly now.
1: Yes. आपके direction के बारे में क्या ख्याल है?
0: देखिए, हमने last time जो हमारे मेहमान आए थे, one of the panels पे थे सहेल, तो वो कह रहे थे कि सही बात कही थी कि देखिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो हमको सामने नजर आ रहा है, हम कभी ज्यादा एडिटिंग के ऊपर बात नहीं करते, डायरेक्टर्स के ऊपर बात नहीं करते, यू नो, दीज आर द मेन पीपल, जो आपकी, अगर सपोजिंग आप कोई सीन देख रहे हैं और आपकी उसकी प्रॉपर एडिटिंग ना हुई भी हो, कि म्यूजिक कैसी होनी चाहिए उस सीन में, कि साउंड किस तरह होना चाहिए, तो एडिटिंग इज रियली इम्पोर्टेंट, एंड डायरेक्ट जो डायरेक्ट कर रहा है ये इज
1: That is true.
0: Is that That's true? उसके true. अगर आपकी direction सही ना हो और आपकी editing सही ना हो, तो ये drama बिल्कुल बैठ जाए.
1: बिल्कुल, आपके बिल्कुल सही बात है.
0: That's what it is, yeah.
1: And that's true. इसकी direction बहुत strong है. हालांकि मुझे थोड़ा सा है कि outdoor locations नहीं है बिल्कुल, maybe it's all indoor, घर ही है basically. लेकिन जिस तरह हम घर की सेटिंग में भी, जो अनस का कमरा है अगर आप देखें, इट्स डिफरेंट फ्रॉम घर का, उसके अनस के कपड़े आप देखें, अनसा के कपड़े देखें, इट्स वेरी नेचुरल, आप यू कैन रिलेट, मेकअप भी नहीं करती, द वे शी इज, राइट,
0: और
1: दादाजी का भी जो कैरेक्टर है, यू नो,
0: कितना
1: वो कितना अच्छा, और मुझे फरहान ताहिर को जरूर मेंशन करना है, ही इज कम फ्रॉम हॉलीवुड एंड ही इज डूइंग अमेजिंग, प्लेज में आ रहे हैं, तो ही एज ताया हु इज सॉर्ट ऑफ I find sometimes like he's struggling कि वो उधर जाए, या because उसके father है, बहन है, और साइड पर यहाँ पे उसकी wife और बच्चे हैं, और सबा हमीद is always like she's amazing, right? She's amazing.
0: इसमें तो बहुत ही,
1: हाँ, बहुत, and yeah, she does her character.
2: ये जो drama के जो director वो हैं कासिम अली मुरीद.
1: हाँ, कासिम अली मुरीद.
2: You know, I think पाकिस्तान के जो student of जो है हमेशा इतनी अच्छी रहती है, but like of course जो Credit goes to writer and the director.
1: Yeah.
2: Writer जिस तरह जैसे हसीना मोइन लिखी थी पहले, अमेजिंग जो उनका ही ड्रामे जो हम देखते थे पहले, but now I think जो है पाकिस्तान ड्रामा because of social media getting so much, उनको जो है अपना फोकस मिल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, राइट, मिलियंस में व्यू, बिलियंस में व्यूज जा रहे हैं,
0: पहले कभी हम सोचते भी
2: नहीं कि ऐसा होगा.
1: बिल्कुल सही कह
2: रहे, बिल्कुल बिल्कुल, या सो या व्हाट्स नेक्स्ट फॉर जो है फॉर अवर पैनल, अपना जो है किस ड्रामे के बारे में हम करने बात नेक्स्ट?
1: ہم زنجیریں بھی کر سکتے ہیں دونوں شدائی پہ کر لیں اگر آپ لوگوں نے دیکھ رہے تو
0: نہیں چلو زنجیریں پہ کر لیں شدائی پہ کریں گے
2: آنکھ ہی بھی دیا ہاں

0: So what do you think?
1: Zanjeere, I think is waqt sabse zyada mashhoor drama hai because of the cast and you know how huge the whole production is. Agar aap uske scenes dekhein aur Shahzad Kashmiri saab ki direction hai. Or of course Farhat Ishtiaq ki writing hai. I'm a huge fan of Farhat Ishtiaq's. So yes, but somehow over like few episodes aap dekhte hai ki thoda sa it has fallen short like how we were expecting. Aap bata isme mujhe thoda sa protagonist
0: okay. To mujhe na mujhe jo last episode maine dekha ab aaj aur kal dusre aaj hum dekhenge to mujhe ye laga ke they needed that ke thoda ab jo excitement shuru hone wali hai na they wanted ke thoda sa usko wo karo aur ab logon ko sochne do ke ab kya hone wala hai jabki usko maar diya
1: हां दैट्स बानो को
0: मार दिया और मैंने तो थोड़ी सी अपनी प्रेडिक्शन कर ली है कि क्या होने
1: वाला है जानने के लिए मुझे
0: मैंने अपने मियां को बोला मैंने कहा कि आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हैपन तो मैं इसीलिए ये लोग ने किया कि चलो उसको थोड़ा सा वो करके नाउ इट विल कम बैक नाउ वी डोंट नो आज का मैंने नहीं देखा कल का भी देखने का तो एकदम बैंग होएगा जब नाउ दोनों के दुश्मन एक ही है
1: हां दोनों ये जो दुश्मन वाला जो ट्विस्ट है आई थिंक कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कुछ लोगों ने नहीं किया था लेकिन आई थिंक जो चीज नहीं प्रेडिक्ट की गई थी वो हाउस हेल्प और सोहराब का अफेयर नहीं किया गया था
0: सोहराब का पहले बता दिया था मेरे मियां को
1: हां मुझे भी थोड़ा सा मुझे था कि ये है क्योंकि
0: हिंट्स थे आई थिंक there are some hints that uski nokrani is making the other brother die by giving the poison
1: wo exactly
0: udhar wo kahan se aa raha hai
1: mujhe tab tak ye lagta tha ki shayad isko tursum ke logon ne plan kiya lekin mujhe mere liye breaking tab tha jab usne uska muh dikhai ka locket pehen liya na tab mujhe shak ho gaya tha ki ye sohrab ke sath hai and you know I think last episode was like aaj ka to main dekhai hu but jo last was very shocking also expected bhi tha lekin shocking bhi tha
0: bahut shocking
1: aur usme jo I really want to give credit to Seher Hashmi jo Bano ka jinhone character kiya she stole the entire episode with her acting I mean jahan pe hum dekh rahe the ki Sajjal was coming out as one of the strongest after Ehsan Khan ka passed away unka character passed away but last mein Seher Hashmi ka itna strong scene tha
0: amazing
1: and it was really sad to see her go like that as well right तो वो बहुत अच्छा था
0: but I think but it gave a really good twist to the drama
1: हां ये exactly है ना exactly
0: वो उसको दिखाया कि वो मर जाएगी उससे एकदम से everybody started predicting के अब ऐसे होगा और अब ऐसे होगा कि अब ऐसे होगा
1: हां totally
0: you know that there's lot to think about के अब क्या होने वाला है
1: totally
0: so that's what I'm thinking but the setting
1: direction of
0: oh my god
1: aapne aaj ka episode nahi dekha aaj wo jungle mein bhag raha hai ek Sajjal escaped and wo they're chased by men aur wo bhag rahe hain pure jungle mein aur wo itna acha unhone us jagah ko cover kiya hai
0: jagah badi
1: bahut khoobsurat hai jahan pe
0: haveli kya khoobsurat hai na kalabagh mein I did all my research
1: I really want to know aisa nahi to wo bahut acha hai the only thing jo mujhe lag rahi hai jis pe actually maine jab dusri jagah review kiya to hume thoda sa backlash bhi aaya lekin mujhe Daniel Zafar ki acting is somehow falling short. Like, Sir Buland had to be a little bit stronger. Uske expression zyada hone chahiye. Jo mujhe lagta hai ki abhi bhi, aaj ke episode mein bhi blank hai. Like, he's not emerging as, you know, the Sir Buland
0: You know
1: character.
0: Why we are, mujhe aise lag raha hai, isliye nahi ho raha ke, kyunke he's not meant to be a Sardar. Wo padha likha, university going ladka hai. To usko abhi tak wo perplexed hai. कि मैं क्या कर रहा हूं यहां लेकिन मुझे करना है
1: हां आई एग्री विद यू या फॉर दैट पार्ट पर मुझे कि कुछ जगहों पे जहां पे आपके भाई की डेथ हो गई आपकी यू नो अब आपकी मंगेतर की डेथ हो गई व्हिच इज आल्सो योर चाइल्डहुड लव राइट आपके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थोड़ा सा तो मतलब एक्सप्रेशन थोड़ा इमोशंस यू नो बट यू आर राइट आई गेट द स्ट्रगल पार्ट
0: बट समझ नहीं आ रही
1: पर आई स्टिल फील राइट
0: तो हम लोग
1: आपस में बात भी कर रहे थे कि अगर सरबुलंद की जगह अगर दानियाल जफर की जगह मे बी बिलाल अब्बास होता है या शुजा असद होता लेट्स से मे बी दे वुड हैव डन इट अ लिटिल बिट बेटर बट आई एम लाइकिंग द लुक ऑफ इट लाइक जैसे दानियाल जफर दिखाया है कि शहर का लड़का है एंड यू नो लेकिन आज अगर आप एपिसोड देखेंगे और जिसमें वो लड़ाई का सीन है एक्शन सीक्वेंस है लगेगा नहीं आपको शहर का लड़का है पूरा कोई कोरियोग्राफ हुआ कुछ एक्शन पूरा जैसे उसने कलाबाजी खाई है नहीं वैसे बस बट यस बट आप सजल की बात कर रहे हैं सजल इज लाइक माय
0: सजल
1: हां आप बताएं सजल
0: देखिए सजल का जो कैरेक्टर दिखाया है इसमें मुझे ये लगता है कि

0: वो अपने कैरेक्टर पे पूरी उतर रही है नाउ शी इज उसकी इद्दत खत्म हुई है अब क्या होगा कि अब स्टोरी जो चेंज होगी कि फाइनली शी विल स्पीक आउट कि उसका दुश्मन कौन है नाउ इट्स टाइम दैट शी शुड स्पीक अप सो दैट तुरसम अब पता चलेगा कि इसके लिए सरबुलंद और इसके लिए रबिया के लिए दोनों का दुश्मन एक ही है अब ये दोनों की मिलकर दे विल ट्राई
1: सरमा दो हो गए ना अब तो सोहराब भी तुरसम का तो ये कसूर है कि मुदस्सर को मारा है लेकिन उसके भाई को तो सोहराब ने मारा है
0: वो तो अभी यकीन नहीं कर रहा ना
1: वो अब कैसे रिवील होगा ये नहीं किरदार भी वेरी इंटरेस्टिंग
2: यू आर वॉचिंग KWJ जबरदस्त ऑन अ कॉफी जलाल जिसको स्पॉन्सर किया ऑप्टिमा आईवेयर इनका फोन नंबर है 403-463-6666 दे हैव टू लोकेशंस वन इन एडरी वन इन कैलगरी नॉर्थ वेस्ट इन नोलन हिल सुल्तान बैंक्वेट हॉल इफ यू लुकिंग फॉर एनी कॉन्सर्ट और एनी वेडिंग एनिवर्सरी और यू कैन से 300 पीपल पार्टी यू कैन कॉल गुलाम रसूल एट 403-280-6677 403-280-6677 अगर आपका वैक्यूम इफ यू नीड अ सर्विस इफ यू नीड न्यू वैक्यूम फॉर योर हाउस और फॉर योर कार यू कैन कॉल ए टू जी वैक्यूम आवर गुड फ्रेंड हनीफ माओजी इट्स ऑन 52nd एंड 16th एवेन्यू 403-207-4882 शफीन जीवन निकासियत प्रिंटिंग अगर आपको कोई प्रिंट करवाना है या तो कुछ जो है डिजाइन करवानी है फॉर योर वर्क और फॉर योर एनी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन कॉल शफीन एट 403-250-2202 मोबाइल मॉडल स्पेशली अलीशा बिनिंग अगर आपने मॉडल चाहिए शी वर्क फॉर टीडी बैंक 403-681-9687 Boston Pizza in a settled town. इनके पास हलाल options भी available है. Yes, this is the only one in Calgary. Boston Pizza in Settle Down Circle Northeast. Our good friend Sanjeev Khart. He is the owner and he will love to have you at Boston Pizza. Sejal Ali, आप दोनों के लिए question है.
0: हाँ,
2: बोले. उन्होंने कौन सी Bollywood movie में काम किया?
1: उन्होंने उस पे किया था ना वो श्रीदेवी वाली थी Mom में.
2: Mom में, yes. Yeah, Mom. There we go. Yeah, she was. I think अपना उनकी आती मारे only.
1: नहीं उनकी एक और भी थी.
0: एक और भी है.
2: Bollywood में
1: वो arrange marriage वाला था. I don't know. I haven't watched that one. पता नहीं वो कहाँ पे release हुई. But that was also. दो किया उन्हें.
2: और ये जो जंजीर के जो अपना जिन्होंने लिखा है.
1: I think that was Bollywood.
0: जमाइमा के साथ.
1: जमाइमा खान ने direct किया था. वो produce की थी.
2: और फिर जंजीर जिन्होंने लिखा है फरहत इशाक उन्होंने एक और drama लिखा है.
1: Super Duper.
2: हम सफर.
1: उन्होंने बहुत actually लिखे.
2: He is amazing. He is amazing.
1: जिंदगी गुजारे भी फरहत इशाक का था. उनके बहुत ज्यादा ड्रामा अभी कभी मैं तुम कभी मैं कभी
0: जब भी खत्म हुआ
2: So ye storyline I'm sure he's one of the top one right now
1: she yeah, yeah. she is
2: Farah she
1: yeah yeah unka hai aur I think Zanjeer a little bit different hai because normally she writes very hardcore like love stories this time she's gone into like action and tribal dushmani aur thoda jagir hai you know wala to thoda different likha
0: hai thoda
1: but Shahzad Kashmiri is also a very very famous director right so to his credit aur jo unhone itni achhi direction is drama mein kar di hai matlab wo jo upar se shot
0: एकदम से करीब का दिखाते ना बिकॉज ड्रोन ही से करें और स्पेशली आउटडोर शूटिंग जो है ना सारी इसमें काफी ड्रोन यूज
2: डू यू एग्री कि अगर हमारे पाकिस्तानी ड्रामे की डायरेक्शन और ये जो स्पेशल इफेक्ट्स अगर वो अच्छी होंगे दैट विल इफेक्ट अवर पाकिस्तानी मूवीज एज वेल जो आजकल जैसे आ रही है पाकिस्तान में लाइक अराउंड द वर्ल्ड बेसिकली होपफुली इट विल इफेक्ट इन मूवीज
0: आई होप सो टू
2: या नेक्स्ट ड्रामा हमराही
0: कौन से कर
1: हम लोग आप लोग कर लेना जो मैंने नहीं भी डॉक्टर हम लोग वो
0: डॉक्टर बहू देख
2: डॉक्टर बहू
0: हाँ चलो
2: डॉक्टर बहू
0: आई हैव लॉट्स टू से
2: अबाउट
1: दैट लेट्स स्टार्ट विद
0: देखिए जब डॉक्टर बहू आई वाज नॉट गोइंग टू वॉच इट एक्चुअली क्योंकि इतने सारे ड्रामे मैं देख रही थी लेकिन जब किसी ने इसके बारे में एक कोई दो तीन सेंटेंस कहे कि ये बिल्कुल ही this guy is so narcissistic and all that I said I have to watch it so maine shuru kiya and I am so pleased with Kubra Khan's acting that you know like she's trying so best ke main un jaisi na ban jaun dusri bahu ki tarah na ban jaun uski biwi ki tarah na ban jaun kyunki that guy apparently

0: is like dictating their lives.
1: Mm-hmm. He is
0: like yeah. बिल्कुल वो उनको अपनी मर्जी से यहाँ तक कि जिस तरह से लग रहा है कि खाने भी नहीं देता.
1: Okay.
0: तुम ये करो, तुम ये करो, तुम यूं करो, तुम वो यूं करो. And there are men like that.
1: Oh, totally. Yeah.
0: So yeah. they are saying कि चाहे आप दिखा रहे हैं कि एक औरत इतनी पढ़ लिख जाए.
1: Mm-hmm.
0: लेकिन जब घर में कोई ऐसा आदमी हो
1: mm-hmm.
0: तो कितना उसके ऊपर इफेक्ट होगा.
1: टोटली एक्चुअली सलमा पर आई थिंक इन्होंने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे ड्रामा yeah. बनाया है क्योंकि
0: बहुत ज्यादा
1: अगर आप स्टैट्स भी पाकिस्तान में देखें ना yeah. तो आई थिंक मोर देन 50% जो हमारी लड़कियां जो मेडिकल स्कूल में जाती हैं या अंडर ग्रेजुएट दे डू नॉट प्रैक्टिस क्योंकि उनको प्रैक्टिस करने नहीं दिया
2: नहीं, नहीं दिया जाता
1: वेरी सैड क्योंकि आप इतनी सीट्स आप गवर्नमेंट का पैसा इसमें जाता है. तो यू नो वी आर जस्ट ऑब्सेस्ड विद having Dr. Bahus but yeah. do not really you know let them do what they want. So उन्होंने उस चीज को जो हमारी पेट्रियार्कल नॉर्म्स है उन्होंने बहुत खूबसूरत से आई थी मेरीन जबार की शॉर्ट डायरेक्शन है उन्होंने उसको उन्होंने उसको दिखाया और बहुत ये टाइम मतलब एक टॉपिक था विच वॉज मच नीडेड टू बी डिस्कस्ड. एज यू सेड के जो लास्ट टू एक एपिसोड था जिसमें सबा हमीद का जो कैरेक्टर है शी इज टॉकिंग अबाउट नार्सिसिस्ट अब्यूज जो वी डू नॉट टॉक अबाउट
0: एंड शी didn't realize it
1: and the way she explained it
0: because the way she said ki main 10 saal tak to mujhe kuch samajh nahi aa rahi thi ki kya ho raha hai and then she started realizing lekin at that point aadat pad chuki hoti hai na aur phir time itna pass ho jata hai kehte hain ki chalne do
1: bilkul
0: sukoon ke ghar ke sukoon ke khatir you know and that is not right you know
1: but ye majority yahi dikhana cha rahi hai
0: Yeah.
1: और उन्होंने इसको ही दिखाया yeah. कि आप वो इतना वो कंट्रोलिंग है कि वो बच्चों की जिंदगियां भी कंट्रोल कर रहा है और आगे से वो बच्चों की वाइफ्स को भी
0: yeah.
1: कंट्रोल कर रहा है. तो अगेन इसमें भी ड्रामा में कुछ क्योंकि मुझे हमेशा वही ड्रामा अट्रैक्ट करते हैं या तो जो बिल्कुल कॉमेडी हो या जिसमें कोई अंडरलाइंग मैसेज तो इसमें भी बहुत इस तरह के सटल ड्रामाज है और जो सब प्लॉट्स हैं या जो मैसेजेस हैं जो हाजरा यमीन का कैरेक्टर है मीना का डॉक्टर मीना बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जो उसकी भी जो लाइंस थी ना मैं वो करूंगी मैं आपको उसके पर्सपेक्टिव लूंगी उस पर कि जब वो कहती है कि क्योंकि उनके बच्चे नहीं है राइट एंड देन ही गेट्स इनटू अफेयर विद अदर वुमन एंड स्टफ तो वो कहती है कि रिश्ते जो है वो सब कहते थे कि जंजीर डालो तो उसने कहा वो रिश्ता ही क्या जो जंजीर डालने से और फिर लेकिन अब उस लड़की ने सो यू नो जस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा जो माशरे में कि जी शादी के बाद अगर बच्चे हो जाएंगे तो हस्बैंड हाँ लॉयल रहेगा क्या चीजें ठीक हो जाएंगी तो उसको भी उन्होंने चैलेंज किया और ये कि नो दैट्स नॉट द केस. तो इस तरह के उन्होंने सटल बहुत से
0: टॉपिक्स उसमें
1: हाँ डिस्कस जैसे अब आप देखेंगे जब वो कुबरा खान की जो बहन है अब वो लड़की आई अपने हस्बैंड से कुबरा खान के एक्टर्स तो वो भी अपनी माँ को जब कहती है कि जरूरी नहीं कि लड़की जब हर बार घर आए तो आप उसको बार बार गिल्ट कराएं कि तुमने वापस कब
0: जाना है
1: तो यू नो मतलब कि बेटियों को बर्डन समझना
2: छोड़ दें
1: जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि शादियां हो गई तो यू नो दे कैन नॉट कम बैक.
0: और फिर दूसरी ये भी तो बताए ना कि हर दफा वो लड़की को कसूर क्यों
1: हाँ एग्जैक्टली
0: लड़की का हर वक्त कसूर नहीं होता है.
1: और एक और मैं बात जरूर कहूंगी कि आप देखो कि जैसे मरीना खान का कैरेक्टर है या आप इस तरह के देख दो ड्रामे और भी हैं जिसमें आप देखेंगे वो कितना अपनी बेटियों को ही डांट रही है अपनी बेटी को ही पुश कर रही है ना. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पेट्रियार्की एक ऐसी मशीनरी हमने बना दी है कि जिसकी औरतें सबसे ज्यादा इनेबलर है.
2: yes.
1: आदमियों को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज औरतें हुआ रीइंफोर्सिंग पेट्रियार्की या मेन इवन कैन सिट बैक एंड रिलैक्स की औरतें हैं जो जज भी कर रही है दूसरी औरतों को उनको मना भी कर रही है आगे बढ़ने से. तो ये ड्रामा उस लिहाज से बहुत अच्छा
0: बहुत अच्छा
2: इसको लिखा है सदम मेहदी जरियात ने और जो मेहरीन जब्बार जो है शी इज अ डायरेक्टर और इसमें ये जो कुर्रा खान एंड ये जो शुजा सईद असद सॉरी ये असद इनका तो इनकी केमिस्ट्री कैसी है अमेजिंग.
0: ओह माय गॉड मी लाइक गुड यू आर विद मी आई एम जस्ट लाइक ही हैज डन अमेजिंग हिज एक्टिंग इन दिस कैरेक्टर हिज कैरेक्टर The way he talks, the way his emotions, everything is so good about him.
1: Yeah, Shujaa said, I think pura green forest hai, green flag hi nahi hai, green forest hai. The way he supports his wife, you know, in the easy decision. Aur dikhaye ki kis tarah jo couples hai, control ka usme kuch nahi hai. It's not how you want to control the other partner, it's how you want to work together as, you know, as family.
2: Or,
1: as one unit. तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा और एक सीन था जो बाद में कट भी हो गया इन लोगों ने दिखाई नहीं आई डोंट नो व्हाई वो उसको साड़ी पहना रहा है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सीन इन्होंने पाकिस्तान में उसको नहीं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आया वो पाकिस्तान में उन्होंने टीवी पे कट कर दिया देयर वाज नथिंग अबाउट इट इट वाज सच अ स्वीट

0: you know, romantic gestures. There was nothing vulgar about it.
1: No,
0: either.
1: Nothing.
0: Lekin, but I think as an audience back home, Pakistan, we are so used to. We used to violence,
2: though.
0: Yeah. But if you see a romantic scene,
2: you know what? Don't you think if they show those kind of things, I think it'll make a difference in the family.
0: It was beautifully short. Or it was just the gesture, you know, the way they are talking and while he's doing it. लेकिन वो बड़ा शोर डाला कि जी कुछ ने कहा कि काटना नहीं चाहिए कुछ ने कहा बहुत अच्छा हमारे ड्रामास कहाँ पे जा रहे हैं आई एम लाइक नो बट या कमिंग बैक टू द केमिस्ट्री आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री स्वीट
1: वेरी स्वीट
2: एंड यू नो लाइक यू नो व्हाट आई हर्ड द रूमर्स इफ एवरीथिंग गोज फाइन एंड ऑफ ऑगस्ट Kubra Khan might come to Calgary.
1: Yeah.
0: Oh, really?
2: Yes,
0: oh,
2: nice. Might come to Calgary to attend one of the event. Yeah.
1: Fashion.
2: Fashion ka jo hone wala. Okay, so I have one of the trailer from Dr. Babu. Yeah. Let's enjoy. Thank you.
3: अब में से कोई भी यहाँ पे मर्जी कर सकता है और अगर करने की कोशिश भी करता है तो आप इस तरह डोर खींचते हैं कि हम अपने मुंह के बाहर करते हैं
4: मेरे आगे अपनी आवाज नीचे रखना
5: इतना बड़ा वेलफेयर हॉस्पिटल है हमारा आपका
4: डोंट यू डेयर गो देयर फ्रेंड
6: डैड को ना गॉड सिंड्रोम है अपनी सारी नेकियां एहसान झाड़ झाड़ कर जाया करते हैं
7: मर्द बहुत चालाक होते हैं हर वक्त औरतों को कंफ्यूज रखते हैं ताकि अगर वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए ना तो हर वक्त ये डर उनके जहन में रहता है कि कहीं उनका शौहर उनके हाथ से फिसल ना जाए
8: इतनी बहादुर बेटी मैंने हवाले की थी तुम लोगों ने उसे तोड़ के रखा
6: दो लोग इतनी बड़ी कमिटमेंट में आ गए लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते
9: तुमने किसी गलत लड़के से शादी कर ली है
5: औरत घर से बाहर अगर चांद पर झंडा गाड़ कर भी आ जाए ना तो मर्द को घर में बीवी के रूप में ही अच्छी लगती है
10: शाहनवाज ने तुम्हें अपनी टाइप की डॉक्टर बहू बना ही दिया
5: सारी शोहरत बस आपके लिए है शाहनवाज आपके टैलेंट की रोशनी इतनी तेज है कि हम सब बस उसके पीछे अंधेरे में ही खड़े
11: डॉक्टर बहू देखिए आज रात 8 बजे
2: जी हाँ डॉक्टर बहू यू कैन वॉच एवरी फ्राइडे सैटरडे ऑन ARY तो लेते हैं छोटे से ब्रेक ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक फॉर द नेक्स्ट टू ड्रामा मे बी थ्री के नेक्स्ट के अपना आजकल जो है क्या चल रहा ड्रामे एंड देन ऑफ कोर्स वी जस्ट गिव यू सम आवर रिव्यूज एज वेल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग कॉफी जलाल KWJ ड्रामा डेस्क ओनली इन रेडियो संगम 94.7 FM
12: गया है असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दिनाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित एस क्लिन कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दिनाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित एस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696
13: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार

0: दुनिया भी फतह कर ली हो बट वी ऑल यू नो इट ऑल कम्स डाउन टू दैट सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट उसके अलावा जो सबसे जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा अगेन नर्सिस अब्यूज जो कि आप देख रहे हैं कि जो आदर जमीर के भाई का कैरेक्टर जो कर रहे हैं उस वो अपनी भाभी के अपनी वाइफ के साथ कर रहा है और शुरू में हमें लग रहा था कि शायद उसकी आदर जमीर की जो भाभी बनी है उनकी कसूर है उनकी गलती है बिकॉज शी इज ऑलवेज शाउटिंग शी इज ऑलवेज एंग्री बट नाउ व्हेन वी हैव गॉन इनटू डेप्थ ऑफ इट वी रियलाइज्ड कि नहीं क्योंकि उसके साथ वही नर्सिस अब्यूज उसको हर वक्त पुट डाउन किया जाता है और उसको ऐसा दिखाया जाता है कि वो विलन है लेकिन एक्चुअली बिहाइंड द कर्टन्स बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ और हो रहा है तो एंड देन आदर जमीर इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर वेयर ही इज ऊपर से लग रहा है कि ही इज वेरी केयरफ्री डजंट केयर यू नो But under say he's like a die-hard feminist who does stand up for women rights, who does speak up when he sees something going wrong. So मुझे ये drama इस लिहाज से बहुत पसंद आ रहा है.
1: मेरे भी वही तकरीबन similar views हैं, especially जब वो उसका इंटरव्यू कर रहा होता है असिस्टेंट का फिर वो चौधरी साहब ने जो उनको इतनी सबके सामने पूरा ओपन टीवी पर उसको बोला आप तो तलाक याफ्ता हैं तो उसको एक स्टिग्मा यू नो और आप अगर आप तलाक याफ्ता हैं इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप ये सब कुछ कर रहेंगी या और फिर वो कितना गुस्से हो जाता है और उससे क्योंकि ही कांट स्टैंड इट के कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट करे इस तरीके से एंड दैट वाज डन यू नो लाइक उसने दिखाया कि हाँ आई एम फॉर वीमेन यू नो और ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं के काबिल नहीं है एंड वो यू आर वेरी राइट कि वो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप वो शी सेज कि वो क्यों इतना शाउट करती है और क्यों इतना गुस्से होती है क्यों इसका टेम्पर ऐसा होता है क्योंकि सामने तो उसका मियां बिल्कुल और कुछ दिखाता है
0: बिल्कुल हाँ जी
1: एंड देन ही इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स टू हर एंड शी इज सो स्केयर्ड ऑफ हिम तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो दे हैव डन इट वेरी वेल इसकी डायरेक्शन इसकी एडिटिंग सब कुछ बड़े अच्छी सेटिंग में ये लोग दिखा रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा दिखा रहे हैं तो मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि पता नहीं ये इसकी समटाइम्स आई फेल्ट के It's there's little bit of repetition, of lekin when you look at it, they have to do it because they are putting some emphasis on those
0: things.
1: I think the way the drama is now moving is going to really get into something which people will really like it.
0: टोटली मुझे डायरेक्शन पे ये फारूक रिंच आपकी डायरेक्शन है और बहुत अगेन बहुत सीजन डायरेक्टर है और राइटिंग जो है फैजा इफ्तिखार की है बहुत अच्छी राइटर है मूवी शुरू में मुझे लग रहा था कि अभी भी कभी जैसे सीन्स कभी कभी आपको डिस्कनेक्टेड लगते हैं यू नो कि थोड़ा सा डायरेक्शन मुझे लगता है कभी कभी वीक है बट देन आई वाज स्टार्टेड वाचिंग इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव जैसे आप नॉवल पढ़ रहे हैं अगर आप उसकी सेटिंग भी देखें वो छोटा टाउन और आदर जमीर का जो एक हुलिया है और उनके जो नाम है एंड द वे ट्रेन का आना जहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे शॉट इट्स लाइक यू आर एक्चुअली रीडिंग अ नॉवल और उसमें एक वो कैरेक्टर है जो बड़ा केयर फ्री है यू नो सो आई लाइक दैट इफ आई वॉच इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि यू नो वो घर भी बड़े कोजी से दिखाए हुए हैं यू नो सो दैट वे मुझे डायरेक्शन बड़ी अच्छी लग रही है इसका लुक बहुत डिफरेंट है इट्स नॉट शॉट इन अ बिग सिटी यू नो इट्स अ वेरी कोजी स्मॉल टाउन और उसकी कहानी है तो इट्स वेरी डिफरेंट राइट
2: इसमें जो माया अली का जो किरदार कैसा लगा उसके एक्टिंग कैसी
0: माया अली की एक्टिंग मुझे हमेशा से अच्छी लगती है मुझे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि माया अली इज ऑलवेज इन मेकअप अगर वो सो रही है तो भी मेकअप उसका बाल परफेक्ट है अगर वो
1: बॉलीवुड मूवी नॉर्मली वी डोंट
0: नॉर्मली अब लाइक बड़ी एक्ट्रेसेस जैसे है हानिया हो गई सजल देखें जो मेकअप बट माया अली इज ऑलवेज इन मेकअप ऑलवेज परफेक्ट ऑफिस में भी घर पे भी even night suit mein so you can't be right even if you're crying you can't be so little bit I think she needs to let go of that because she's good actor
2: director bol nahi sakta usko ki you know like you just wake up
0: no maine suna hai kuch cheezon mein ki jo bade actors hai no they don't tell they don't listen
2: acha so uska bhi teaser hai mere paas let's enjoy this teaser
3: phir mujhe galat naam se pukara hai
4: okay sir
3: kyunki main khushnuma nahi hu
4: aapko kisne kaha ki aap khushnuma nahi hai उसकी आंखों में दर्द भी नजर आया दर्द जो शायद किसी गैरों ने नहीं दिया अपनों ने दिया
3: तेरे बिना बहुत सा है मेरा पछतावेगा
5: उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता वो तो
3: शर्मिंदगी का हालती का
6: अगर तुम मेरे और सीमा में आने वाले फासले को महसूस कर सकती हो तो तुम्हें क्यों ना मेरा खाली पर नजर आता
3: तुम्हें बसाने का दावा करने

0: मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 5878321208।
1: बड़े सोचा च पए हो वीर जी, की गल होगी?
0: थक गए हैं घर लब लब के, कैलगरी च घर खरीदना तो हुन बड़ा ही औखा।
1: तुसी घर चंद्रमा ते लब दे होने, कैलगरी च नहीं। आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा।
0: कर लिया जी नोट, फोन नंबर 403-618-2112।
1: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल।
0: अच्छा जी, अरुण कौशल लब के देणगे सानू घर?
1: जी हां, कल्ले घर नहीं, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल, घर खरीदना होवे जां बेचना, प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम तो ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112। ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ। मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
2: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757।
1: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
0: ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ।
3: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ।
0: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ।
3: ਲੈ ਦੱਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408।
0: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ। 403-607-4208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ।
4: ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਲਈ ਜਾਇਓ। ਵੀਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।
5: ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਐਲਟਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋਹਰਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ।
4: ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 403-616-2445।
6: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
7: की होया?
6: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
7: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
0: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
3: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
2: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 403-870-1790 403-870-1790 स्टार मूवी।
8: मान संग सप्ती।
9: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 95.